हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को। आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम 100.7 दोस्तों, और आपके साथ हिंदी के खंड में फिर एक बार हाजिर

है आप सभी के लिए, आप सभी के दोस्त आरजे वियली। और दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हिंदी के सबसे पहले खंड में। और सुबह के 9:30 बजने वाले हैं। आप सभी अपने अपने कामों के लिए निकल चुके होंगे और जाने के लिए आप रेडी हो रहे होंगे, या फिर अभी तक आप घर में हैं और खाना खा रहे होंगे, या कुछ मतलब कुछ भी कर रहे होंगे। आप जो भी कर रहे हैं ना दोस्तों, आप सभी करते रहिए, साथ साथ FM सो 100.7 को भी सुनते रहिएगा, ठीक है। मैं दोबारा हाजिर हूँ आप सभी के लिए, आप सभी के दोस्त आरजे वियली। और दोस्तों, क्या आप सभी ने कल रात की नींद अच्छे से सोया है, या आप सभी की अच्छी नींद निकली है या नहीं, आप हमें अपने संदेश के जरिए जरूर बताइएगा, ठीक है। आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ दोस्तों आप सभी के लिए एक प्यार भरा गीत और सुनाने के लिए, और आपसे बातें करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए। दोस्तों, मैं दोबारा हाजिर हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी ने आज का ये जो दिन है दोस्तों, थोड़ी मतलब बारिश हो रही है, शायद पता नहीं कब ये मौसम ठीक होगा। वैसे भी हम बारिश के मौसम पर पहुंच चुके हैं और बारिश का मौसम है। तो आप सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी कहीं भी जाएंगे, जो भी करेंगे दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी दोस्तों बहुत ही सावधानी के साथ चलाइएगा गाड़ी, ठीक है। ज्यादा तेज मत चलाना, ठीक है, क्योंकि हमें आपकी फिक्र रहती है, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल बातें तो यूं ही होती रहेगी और आपके संदेशों का भी इंतजार रहेगा। तो आइए, इस खंड का सबसे पहला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत समझावा, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे आज के हिंदी के सबसे पहले खंड का सबसे पहला गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के आवाज में गाया गीत समझावा। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। मुझे ये गीत बहुत ही पसंद है और मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है और आपको भी सुनने में अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और शायद आप अपने कामों में जाने के लिए पहुंच चुके होंगे या फिर अभी रास्ते पर होंगे, गाड़ी पर बैठे होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे या फिर पैदल से जा रहे होंगे। वैसे भी बाहर बारिश हो रही है कि नहीं? और मतलब बारिश में ज्यादा भीगिएगा नहीं, ठीक है? अगर आपको जुकाम हो जाएगा ना तो हम रह नहीं पाएंगे, ठीक है? हमें आपकी बहुत ही ख्याल रहता है, ठीक है? हम चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ये सब वगैरह वगैरह ना हो, ठीक है? तो चलिए आपके संदेश की तरफ चलते हैं और इस खंड में दोस्तों सबसे पहला संदेश मुझे भेजा है दुर्गेश जी ने। और दुर्गेश जी लिखते हैं कि आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है जी, रिमझिम। हाँ, रिमझिम रिमझिम बारिश इतनी अच्छी लगती है ना। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब जोरो जोरो शोरों वाला बारिश मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे डर लगता है। लेकिन ऐसा अभी जो बारिश हो रही है ना, रिमझिम रिमझिम, वैसे वाला मुझे बारिश बहुत ही पसंद है और बहुत रोमांटिक भी है ना दोस्तों। और आज हम आपके साथ हम रोमांटिक रोमांटिक बातें करेंगे दोबारा, ठीक है? आप कहीं मत जाना हमें छोड़ के। और यहाँ पर मेंगमोई ओ अनिलाओ के गई थे यार, रोनथेंग मत सजो अनिलाओ 9:26 वे वे आ मेंगमोई थे ले के गई थे खोशिंग थे मैसेज रोनथेंग आमा रोचू के गई थे मैसेज के दोंग मसा। इसलिए हम के गई थे का मैसेज संदेश पढ़ेंगे और उन्होंने लिखा है हेलो कन्नाओ दू तक नमस्ते। यस, आपको भी नमस्ते। के गई थे दम एम निजालम थे मुतु एम nghe nhỉ à World Cup thì khai lâu thiệt về em vô in toán tật lễ lim tật hun ý mặn thấy lim lim tật cả hun ý mặn thấy na đủ sắc na cả là nè chế cả văn lõm chuyện tật em ô nàng ni po đủ sắc na cả là một một siêu nhỉ ô thì cho mình mỗi tiếng hàn văn là nam sẽ điều tin nam lê rồi thì po cả mình mỗi tiếng hàn văn là nam sẽ điều tin nam lê rồi thì hi chuan nam hi cái thì thấy top ta nhỉ cả phẩm kim ô cả phẩm kim lâu ha cả phẩm kim phá chín. Or another message from Mamuni. Mamuni hiyan arjwe via Suprabhat. Yes, aapko bhi Suprabhat, Mamun. Tsoan iban re emem. Vuin tsu nuam tokin o kwa anuam boksi a. Nal tok tok ngay tlapa ang aronti ani etro. Tun nang kwa hitu i favorite kwa ang kwa ka ani om siya nga dro kolum ka idu si lawa. Kezan kolum hi nuam gati zok ta ni mo. Mani kan se to ka dro ila siya em. Alright, or kung te ahiyan, arje mong VL kay tu min mamolaw tiro. ka, jelal zonga mi. Iban sual ta kung te, o, oh, lalzama aom ka o. Oh. Isualutuk o. Oh. Tuan, vipin ki taraf se, mere dos. मेरे फेवरेट दोस्त की तरफ से संदेश आया है, लेकिन शायद मैं इनका संदेश इस अगले गीत के सुनाने के बाद चलना चाहूंगी, पढ़ना चाहूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़ के कहीं जाएं। और चलिए मैं गीत की तरफ चलना चाहूंगी और गीत मैं सुनाना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत गीत राहत फतेह अली खान के और आशीष कौर के आवाज में गाया गीत तेरे बिन। और इस गीत के बाद मैं आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी। विपिन और जामते ओमेगा सांगते ते मैसेज पहुंचा है, तो दोस्तों आइए फिलहाल ये गीत सुन लेते हैं, फिर मैं वापस आऊंगी आपके संदेश की तरफ, ठीक है? और मैं चाहती हूँ दोस्तों कि
इसी तरह आप सभी का समय अच्छे से बीतता रहे दोस्तों. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे. यस, हमेशा अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा दोस्तों. तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गीत तेरे बिन मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को आसिस कौर और राहत फतेह अली खान की आवाज में गाया गीत तेरे बिन। यस, आपके बिना हम अधूरे हैं दोस्तों, क्या बताएं। अगर आप नहीं हैं तो ये FM जो 100.7 ना बहुत ही अधूरा है दोस्तों, तो हमें अधूरा मत रहने दीजिए दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा याद कीजिएगा दोस्तों, जब भी आपको मौका मिलेगा दोस्तों, ठीक है। हमें आपका इंतजार रहता है इस FM ज़ोय 100.7 की दुनिया में दोस्तों। यस, और हिंदी के खंड में दोस्तों आप सभी के साथ जुड़ी है, आप सभी से बातें कर रही है और आप सभी को हिंदी के गीत सुना रही है, आप सभी की दोस्त RJ वीएली। तो चलिए आप सभी के भेजे गए संदेश की तरफ चलते हैं। मेरे दोस्त विपिन लिखते हैं, यस ओ माय डियरेस्ट विपिन को मैं इस FM ज़ोय 100.7 से मैं फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। और डॉक्टर मिनी खरदोन सिया अतई अतई मोक्सियामो, काश हम पहले मिलते। और लिली से पहले काश हम मिलते तो कितना अच्छा होता है ना विपिन। और विपिन लिखते हैं कि मौसम की मांग है कि पसंदीदा शख्स RJ वेली को बुलाया जाए। एंड यस, और यहाँ पर दूसरा संदेश मेरे बहुत ही खास करीबी स्पेशल दोस्त अजाम की तरफ से संदेश आया है। सही मई मई छीन श्याम मोजाम नाई थोक मन लवेंगे ओ। और जाम अहियान RJ वीएल नमस्ते सुप्रभात रोंतिया ओले नंगपोले ओ जाम चुआन वो इन खुद से तक नुआया खुआ नुमल सोम नले वेन हिम नचंग इन ट्रिसेल छतक नेन FM जो ओर मोयरून कन इन टोंगले थे ही कन वन लोम CM वो इन ट्रिसेल ना छतक ने आ ट्वांग तकाई दिवती थे ना दूसकना कलाने इपे लिस्ते इतुति पुई RJ ते ते ले उची पे ले वी कुंग ते अन चुरोन RJ साइलो फेरते नेन इंतान कंट्रोल रूम में ड्यूटी ले ड्यूटी ऑफिसर तान पो ओ तीन पुसांग मा मते नु परमिशन वेन खंग मी तान ले उचीपिया ngakte pa bil ko thlir mo ya mun pui nguri sailo pa enga par pari pu mai lavin oron ti ani ole jam man fel chin ta ke bahut bahut shukriya jam aapke bahut hi lambe संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज और लुचुर चुर मया वाओ, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे डर है कि मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगी। तो आप गुस्सा मत करना, मुझसे नाराज मत होना दोस्तों, आप सभी के प्यार ना हमें इतना खुश कर देते हैं और हमारा समय इतना अच्छा बीत जाता है, क्या बताएं दोस्तों। यस, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओए ओमेगा कैसा लाका कत्यांका रथो नगाई लो दिल्ली लेंगा रो कंग इजुआ तुक थर दू सकना इतान श्रीसेल न छाने निलेन नुआ मरोंती आम कवन लोम छीन तक एम लेकिन आरोन लेंग ले रू ओमेगा रिम चांग मो मिनल रोन लो ले रू ओ स्टूडियो आते त्रो चुन ये थर तो पोखा मिनरोन थर तेम वे आगा

और मामूनी का संदेश आया है और मामूली लिखती है कि आज भी रिसक में ना ही चुआन लथन अंगाई लाओ अथन चू कहला कहला इशे तो आ लव आज का फिल्म मम्मी शायद तिखा कदूती इशियात खा रोनती आ ए तेरे मैं कंगाई था जे लंग ओ चुआन लल दिन पुयते सोमिते दुर्गेश जी भी हाजिर हैं यस लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं ये अगला गीत आप सभी को पहले फिर दोबारा सुनाऊंगी और इसके बाद हम चलेंगे आप सभी के प्यार भरे संदेश की तरफ ठीक है। तो हमारा समय पूरे 10 बजे तक का है और वैसे भी हमारे पास अभी समय बचा है ठीक है यस। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं और इसके बाद हम सुनेंगे मामूनी का जो फरमाइश गीत मनपसंदी गीत। तो चलिए ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तेरा होने लगा हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत आतिफ असलम और अलीशा चिनाई की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे. यस, और वैसे भी दोस्तों, आपसे तो बहुत कुछ

ना है मेरे पास ढेर सारी बातें हैं आपको शेयर करने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए, लेकिन दोस्तों हमारे पास इतना कम समय रहता है तो हम आपसे उतना भी ज्यादा बातें नहीं कर सकते, क्योंकि आपके संदेश को भी पढ़ना पड़ता है, गीत सुनाना पड़ता है काश हमारा हमारे पास पूरे दिन का समय होता, कितना अच्छा होता ना दोस्तों। यस, और आप जब हमें संदेश भेजते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। फिर एक बार याद रखिएगा, ठीक है? और तो चलिए हम अगले गीत की तरफ चलेंगे, और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी माहुनी का मनपसंदी गीत और दुर्गेश जी का संदेश है कि कभी कभी हमारा रिक्वेस्ट भी प्ले किया करो दुर्गेश जी, मैं आपका मतलब आपका रिक्वेस्ट फरमाइश गीत में प्ले करती हूँ, है कि नहीं कभी कभी मैं प्ले नहीं करती क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में वो गाना नहीं होता है, इसलिए, ठीक है? यस आप नाराज मत होना, क्योंकि अभी जो आपने रिक्वेस्ट किया था ना रिमझिम रिमझिम, वो हमारे पास है और मैंने वो ढूंढ भी लिया है। यस, इस गीत के सुनाने के बाद हम जरूर सुनेंगे, ठीक है? नाराज मत होना और Lelin po ya hian RJ ble le tur kha nang ma tan le lo ngai tha ve zong zong tan le RJ zong zong tan le ka chian te veng shang shang ami te RC yarin mo ya tlua nga muan zawa wal po ya at atin tina lo ma te po ya te tan aron ti a fel chin le mai Lelin po ya mi lo ngai tha zia ro o ti chuan so mi se song hian RJ zo kan a zo kan a don tia moi deu deu khan min lo o yang ti o zo a pa in kan lang ai thla reng don che nya an van fel lom em min van fel em tui deu khan zo khala ai ula ti chuan mi lo a ke veru o chuan or dusra sandesh nguri salo hian RJ vel kalo ngai thla reng che o i him theya ngai thla kan nuam thrin duty nam zelo ron ti bok a e khai lim hi ka thu poe ni mo ke chu zo bang zo dam chung rei lo te ya khan lo lung a em em lo la mo PC Jessica hian RJ vel che bai ni man nuam o next ka in pathum tan o ron ti boka kan van lom tak em o PC Jessica i o or as it sai lo hian lal van vo in RJ duty in vasia lom aron ti ani e khai kan van lom si em o all right to chaliye ab hum chalenge अगले गीत की तरफ, और गीत है दोस्तों शायद अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत, माहुनी का मनपसंदी गीत सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए मामोनी का मनपसंदी गीत और दुर्गे जी की तरफ से जो फरमाइश गीत थे रिमझिम रिमझिम, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत, मैंने आपको 50-50 करके सुनाया। जब मैं दोबारा आऊंगी ना अपने दूसरे खंड पे, हम पूरा गीत सुनने के लिए कोशिश करेंगे अगर हमारे पास वक्त होगा तो। ठीक है, यस। और यहाँ पर यस, हमारा समय खत्म होने वाला है दोस्तों। विपिन मेरे दोस्त की तरफ से संदेश दोबारा आया है, उन्होंने लिखा है कि आरजेवीएल रेमचुआन आए हो मेरी जिंदगी में, राजा हिंदुस्तानी फिल्म मी लाखा खोंग इन मिन लाउ प्ले सक के चू कशांग हुई बोका खलत हन ही अशांग लाउ थे लाउ। ठीक है, हम प्ले करेंगे। यस, क्योंकि क्योंकि क्योंकि आपको बहुत ही रुपई फेल तो खाई मुबोक्सी है कि नहीं। ये गीत तो रिक्वेस्ट करना बनता है विपिन जी। ऑलराइट, और मामून यहाँ नारे वी एला नल टोप का लव फील वेंग वेंग रोनती बोका ओ मामून सॉरी लू तुक हो अवा इन कन्या था मन लवा छन छू दुर्गेश जी खा अति ताऊ चेप चेपा सुवांगचुआन, हम नहीं चाहते कि आप नाराज हो हमसे। तो आइए दोस्तों, हम इस खंड का आखिरी गीत सुनेंगे हमारे सर जी विपिन सर जी का। यस, नो नो, डॉक्टर विपिन सर का संदेश। यस, मतलब रिक्वेस्ट सॉन्ग, फरमाइश गीत, आए हो मेरी जिंदगी में, बहार बन के। दोस्तों, आप सभी को सुनाना चाहूंगी इस खंड का आखिरी गीत। और दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्या मतलब आप नाराज है किसी से या जिंदगी से? अगर आप नाराज है, आप दुखी हो, मैं एक बात कहूँ आपसे, यस, कि ना दोस्तों, कभी भी मत भूलना कि आज बुरा है कल अच्छा आएगा। ठीक है, अगर आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा, वक्त ही तो है बदल जाएगा। ठीक है, जो आज मुश्किल लगता है ना दोस्तों, कल कहानी बन जाएगा, ये आज का बोझ कल हल्का हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना आरजे वील की तरफ से। ठीक है, और वैसे भी आरजे वील को भी ना दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को ना पीछे छोड़ के बस आगे की तरफ बढ़ रही है, और मतलब खुशी खुशी। ठीक है, यस, वो जिंदगी से, मतलब आरजे वेली जिंदगी से नाराज नहीं है, और आप भी जिंदगी से नाराज मत होना, क्योंकि जिंदगी आपके भलाई के लिए सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो आज के इस

रिमझिम रिमझिम मौसम में आप सभी का समय अच्छे से गुजरे। तो आइए दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों, आप सभी का इंतजार रहेगा 11:20 पर। तब तक लिए दोस्तों आज वीली को इजाजत दीजिए और इस खंड के लिए, केवल इस खंड के लिए बाय बाय, टेक केयर, वेकू ओ फोता।

नमस्ते आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वेली की तरफ से फिर एक बार गुड मॉर्निंग यस सुप्रभात और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस खंड में हमारे साथ आरजे वेली के साथ हिंदी के खंड पे और आप सभी सुन रहे हैं मेरे साथ आकाशवाणी आइजोल एफएम 100.7 दोस्तों और 11:30 बजने वाले हैं और आप सभी अपने अपने कामों में बिजी होंगे शायद और हम दुआ करते हैं कि हम आशा करते हैं कि दोस्तों कि आप सभी का समय बहुत ही अच्छे से बीते और बाहर बहुत ही शायद मैं मतलब शायद बाहर बहुत ही जोरों शोरों से बारिश हो रही है और आज के इस बारिश के मौसम में ना दोस्तों आप सभी का साथ देने के लिए दोबारा हाजिर है इस एफएम 100.7 के हिंदी के दूसरे खंड में दोस्तों आप सभी की दोस्त आरजे वेली आप सभी से प्यार भरे बातें करने के लिए और हंसी मजाक करने के लिए हाजिर है दोस्तों। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए इस खंड का मतलब शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ सुकून गीत के साथ शुरुआत करते हैं। आइए ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम और आप सभी के प्यार भरे गीतों यस संदेशों का दोस्तों इंतजार रहेगा और आपके फरमाइश गीतों का भी दोस्तों। तो ये इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हिंदी के दूसरे खंड का सबसे पहला गीत दोस्तों आप सभी के लिए आरजे वीली की तरफ से सुकून गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। यस, आप जहाँ पर भी होंगे दोस्तों, कहीं पर भी होंगे, जो भी काम कर रहे हैं, आप अच्छे से करते रहिएगा, लेकिन अपना ख्याल रखना साथ साथ, ठीक है। हम नहीं चाहते कि आपको कुछ भी हो तो चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि सुकून के बारे में दोस्तों। ये गीत जो भी पसंद करते हैं ना, मैं उन सभी के लिए, मैंने उन सभी के लिए पेश किया था दोस्तों। तो अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। और अगला गीत, यस, फिर एक बार, वैसे भी आज बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि बारिश ख़त्म हो जाए, बारिश रुक जाए। और कहते हैं कि दोस्तों, आप सभी को भी एक सुकून किसी के साथ भी चाहिए। और जिस इंसान से आप बेहद मोहब्बत करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, उस इंसान से तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती होगी ना दोस्तों। यस, और जब आप उनके साथ रहते हैं तो आपको सुकून नहीं मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों? मतलब आपको सुकून नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप दोनों में ना कोई प्यार का संबंध नहीं है। लेकिन ना दोस्तों, दूसरी दरफा ये कहते हैं कि उसे छूना नहीं, बस उसे देखना सुकून है, दूर रहकर भी उसका साथ होना सुकून है, ना कोई जिद है उसे पाने की, ना कोई दावा है, उसकी एक झलक में ही खो जाना सुकून है, ना रिश्तों का नाम है, ना कोई बंधन है, बस उसी के चाहत में ही सुकून है, वो खुश रहे कहीं भी, यही दुआ है मेरी, उसकी खुशी में खुद को भूल जाना सुकून है, उसकी खुशी में खुद को भूल जाना सुकून है। तो इसी तरह दोस्तों, आप सभी ना अगर एक दूसरे के साथ भी नहीं रहते, ये लाइक एक डिस्टेंस में रहते हुए भी, अगर आप इस तरह उनके साथ ना रहते हुए भी अगर आपको सुकून मिलता है ना, वो एक सच्चा प्यार होता है, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल हम बातें करते रहेंगे और प्यार भरे बातें करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे दोस्तों। मैं आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार करती रहूंगी दोस्तों। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी रोहन प्रीत और नेहा कक्कर की आवाज में गाया गीत बारिश में तुम। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को रोहन प्रीत और नेहा कक्कर के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। बारिश में तुम, यस मुझको बारिश पसंद है और मुझे बारिश में तुम, यस कितना प्यारा गीत है ना दोस्तों। जब भी मैं इस गीत को सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस गीत को सुनकर। और मुझे ये महसूस भी होता है कि जब एक दूसरे का प्यार जब मिल जाता है तो कितना अच्छा लगता है। काश काश हमारे पास भी कोई ऐसा हमसफर जो हमें इतना चाहता हो, इतना प्यार करता हो, जो हमें छोड़ के नहीं जाता हो, ऐसा वाला प्यार जिसके बिना हमें हमेशा जो सुकून मिलता है, काश ऐसा वाला भी हमें मिलता तो कितना अच्छा होता है ना दोस्तों। लेकिन मैं बहुत ही लकी हूँ क्योंकि पूछिए क्योंकि आप मेरे लिए हमेशा हो, ठीक है, यस। और तो चलिए, मैं गीत सुनाने से पहले आप सभी के संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। और मामूनी खान सुकून ला कत थाक लाई खाना जे भी सुकून ला सुकून कति ही अरे थे लो रे रेंग अतु अथु की अनुआम तोप लनिन ओम हि चु अनि लो अनि नि एद्रो अमक हे अमा ह्यान हे इंतिंगे अस नै था हि अनुआम वोंग वोंग अनि द्रो मामुन अले कन दुगे नंग थे बक्सी आ क दु छिन ngai zual ka ngai zual ngai thalo अनि लो ka ngai zual नंग तिलु इदू ती पुते हि नुला वे वे तिरो सुआल तुक ओ चुआन जोनगस बोह हियान गई जुआ नमस्ते नेक्स्ट इतान हरोन ती आ चुआन पे हियान अर्जे आई इसगमेंट मसा आ तिपो खान कलौ गाई था रें आ मासे कलौ लुत मन सि लवा श्योम चु कति वे देवनी फेल छिने पे खुद से नुआ पो हियान इंगे ओम दान अंगाई रें थो ओ कन लुआ लियाम दो नो मले पे अल बी रन हियान अर्जे वे इ्ले ली सवन अल वे इओ ने नवा इन रेम छीन तक थे आ अरेम चुआन पी लु खा लो ती ला इला इला नुई तम लो इन सु ए नुई ना तोड़ थे इन रोन थोन लो एम बोकलोम मैं मोटे हियान वन लबर डे अलो थे हूना पुआन छुई थी आम जेल जामन इके कोर तुर अमन जान वे इन कलो थ्री सकंग से अति अति दो मेल टॉप चान जाम हियान आरजेवी नमस्ते ओले जाम नम बोले ओ आरजेवी एल वी कुंग कोप्लोर थिया मत्सु निजान लम अन कोम अन निजान लम अन कोम छक लुंगरेम चिमिन अनोल देल दै अंती कबंगाई दोन तक एम ओ एफ एम सो ओर मोय रुना मीन सोई सतु कने तो दोन लो नेक्स्ट सॉन्ग इ ड्यूटी बुने इन तान ले निजाना लुंगरेम चिम इन अनहोल तेल तक बी कुंग ते आ ओम हर केबिन शियान रेंग नान ओ तक तक मी जा मनहोल तक तक मी ओले तो चलिए फिलहाल गीत की तरफ बढ़ते हैं। और गीत मैं सुनाना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत गीत। ये गीत है यस हंसाते हो रुलाते हो अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत है। और ये गीत ना मेरे दोस्त सर्थ मोना को ये बहुत ही पसंद है और कल भी उन्होंने अपने काम करने के तरफ जाते समय गाड़ी में वो सुन रहे थे और कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा गीत है इसलिए उनके लिए मैं ये दोबारा पेश करना चाहूंगी। तो चलिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार तो उनको मिलता है जो दिखावा करते हैं, ऐसा है क्या प्यार तो उनको मिलता है जो दिखावा करते हैं, दिल से प्यार करने वालों को तो सिर्फ धोखा ही मिलता है। अनिमी अधिगिनती एम तो
چلیے فی الحال سنتے ہیں, ہساتے ہو رلاتے ہو, میری طرف سے آپ سبھی کے نام.

वेल, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को क्या ये गीत पसंद आ रहा है? हंसाते हो, रुलाते हो, हमेशा तुम सताते हो. यस. और यहाँ पर आपके संदेश आए हैं उंगूरी जिलजामा जोनगस बॉय के लिए. चौन डॉक्टर मामी की तरफ से संदेश आया है, मसे है हिचु मिजो सेगमेंट तान कन्हन खे खलंगे ओ किनाज मिजो आरजे ते हन रंछु अंगा लो चार तोर अंगा इल्ला तरो. यस. और अगला गीत हम सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत गीत जो मेरे दोस्त का मन पसंदी गीत है. यस. कौन वो है? जामा. जामा का मन पसंदी गीत है राता लंबिया. यस. और इसी के साथ आपको भी, मतलब इनके साथ आपको भी जरूर पसंद आता आएगा, मुझे यकीन है. ठीक है. और तो ngori salo hian arjevial kho che nuwa ya po io anal nga yin anal ring o ka ban lo me mongor tak tak mo ke lo nga ta ring se o nuam ti tak tak chu an nuam ti tak tak chu an omalom le tu tu nge niang o ngor milo shilte a nuam hi antivik me nuam hi antivik china sin ge ma sha dana chuan zama hian ajvl imo meng chang te kha akekor mezor men sha tian te dan hi om se ka ti e treatment zan ve treatment zat ve chu sui lo puan puan than ka in tumin a free in kalau chui sak em ang avan nam don em tumin moi te lo sha mo zaman ar puan than nen chen gin aron alo free don chen ya o chon mo zam thil pakhat kalau shilang chi o gp hi mo a style kala to don message hi ka thon hian mo a sin har thai lutuka a online ring thau thin si a alas alas in time te hi kalau muvek chin box sia mo muvek thei box si a ka message a sin har thei lu tuka chu wang chuan ati dan style kala tonga min law message le hun a chuan rei tok tua ka sin ve tong lo shi lang che o zam or Jonagas boy han ngai zol hela thu hin nui moi lal nu RJT teitan barishe a gayi or chali bhi gayi koi dil me siva tere aaya nahi jab bhi sajda kiya naam tera liye bhul jana tujhe humko aaya nahi को ये चगिन ये इलो कॉपी पेस्ट आ आ माय रो जो ये थियाम लो तुक ओ लो दिजे रो जो नगस बॉय ओ यस. बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस तरह बहुत ही खूबसूरत शायरी पेश करने के लिए. तो चलिए मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी को मेरे दोस्त जिलजामा का बहुत ही मनपसंदी गीत राधा लंबिया मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

पल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, अच्छे दोस्त जामा का बहुत ही मन पसंदी गीत रात लंबियां आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। जुबिन नौटियाल और आशीष कौर की आवाज में गाया गीत। और तो चलिए अगला गीत सुनाने से पहले अलबी रनखे खान पीलू दीखा, यस उन्होंने फरमाइश की है तो वो मैं सुनाना चाहूंगी इस अगले गीत में दोस्तों। और यहाँ पर गुरी साइड ऑफ यान ओ ओ ओमेगा ओमेगा गुरी ही लौट मसो का RJBL mengmoite akha apujel zamane na chuan in report bad ro se in hanal sela nupui turpo amuwat mayang mengmoite tan cha nem kalo ngai ni chu om shethiam meyem shethiam tereng e o chuan ke hindi thiam ve chun mere sapno ki rani ab aegi tu mere sapne ओले लोसिया जो लो लोला जो नगस बॉय क्या करते हो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप संदेश भेजेंगे तो पूरा भेजिए, ठीक है अगर आप पूरा नहीं भेजेंगे ना तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ओले। और ज्या दूर कैसे तो लौते रोनती ओले चुआन Omega sang de hi oh allo aller fal bi kin ke sia bo in hi kang ai zo al idu om ne hi ra po hian anan da thei lo ani e amang tu chia chun zom to lo me yang ole bhai bhai shukriya mere pyare dosto वह नाम चिंता केम अले रोंजई होई ओमियन तीखा थे बुक्सिया ओमेगा सांग दे ही अले। तो चलिए फिलहाल पीलू एलबी रेंथी की तरफ से उनका फरमाइश गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

Well, yes, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चलिए गीत की तरफ चलते हैं। हमारा समय दोबारा खत्म होने वाला है। हम इस खंड के अंत तक पहुंचने वाले हैं दोस्तों, तो आइए मेरे साथ आप सभी एंजॉय कीजिए। मामूनी हनार जे वी एल पी लू नल ए रोंतिया एल बी रेंथे खाना रोन रिक्वेस्ट अमो। तो चलिए फिलहाल अभी मेरे साथ आप सभी इस बारिश के मौसम में इस बारिश के मौसम में आप जहां पर भी हैं दोस्तों, आप मेरे साथ नाचिए, ठीक है? आपको खुश रहना है, आपको एंजॉय करना है अपने इस समय का, ठीक है? ये जो समय है ना, ये जो पल है ना दोस्तों, कभी लौट के आएगा नहीं, ठीक है? इसलिए जो आपके पास बहुत ही थोड़ी सी समय है, पल है ना दोस्तों, उसे भरपूर एंजॉय के साथ जीना चाहिए। और मैं चाहती हूं कि आप हमेशा एंजॉय के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ आप सभी अपना समय बिताएं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं ऊंचा ऊंचा ऊंचा लंबा कद, बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

तो दोस्तों, आप सभी ने इस गीत को मेरे साथ सुनकर आप सभी को अच्छा लगा या नहीं, आप मुझे बताइए प्लीज। तो चलिए दोस्तों, हमारा समय खत्म हो गया है और आप सभी को एक गीत के साथ दोबारा अलविदा कहने का समय आ चुका है दोस्तों। लेकिन ये हमारा आज के लिए आखिरी खंड नहीं है, मैं दोबारा वापस आऊंगी 2:00 यानी 2:35 पर, ठीक है। यस, और kecha zau to in kasha lb rentla hian rjv kal kala du ilo ti chua ka kalom lu tuk mel chasi si kalom lu tuk o lb kecha tun kecha zau la me yang chuan pa eng a hian rjv ang ei mi tu ton ang ei nom lai tak chu chiar lo kha a chalo e kalo sia chak te reng nen akina a next art chuan kan chhiar to zel don nia o pa eng ale chuan vin la te leng chak don em or enge enge i tho mek ne kina milo shil ro or to chali isi tarah aap sabhi ka samay yu hi acche se bita rahe hamare sath fm so 100.7 ke sath aur aapke liye aapka sath dene ke liye aapko fir se dobara western music sunane ke liye aap sabhi ki dost lovely rj tete hi hazir hogi apne western music ke sath to aap kahin nahi jaiye apne kaam karne ke sath sath unhe suniye hame suniye dosto अच्छा लगता है जब आप हमें संदेश भेजते हैं, आपसे बातें करते हैं दोस्तों। तो आइए इस खंड का आखिरी गीत तू जो मिला के की आवाज में गाए गीत मेरे दोस्त उचिपिया का बहुत ही मनपसंदी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

यस जो भी आप काम करेंगे ना दोस्तों, आप सभी अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। शाम हो चुकी है और जी हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप सभी के साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे। तो आइए, आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतजार रहेगा और मुझे यकीन है कि उम्मीद है कि आप जरूर हमें सुनेंगे, ठीक है। तो आइए सुनते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, आजा मैं हवाओं में बिठा के ले चलूं, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत आजामी हवाओं पे बहुत ही खूबसूरत गीत, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यस, और तो चलिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। यस, और ये हमारा आज के लिए आखिरी खंड है दोस्तों। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप सभी से कि आप सभी का दिन समय अच्छे से गुजरा होगा दोस्तों। अगर गुजरा नहीं है तो दोस्तों आप गुजरने के लिए कोशिश कीजिए दोस्तों। यस, मतलब हम सभी के पास बहुत ही कीमती समय वक्त होता है, और इस कीमती वक्त और दिन समय को भरपूर एंजॉय के साथ हमें जीना चाहिए, है ना दोस्तों, है कि नहीं? तो यहाँ पर दूसरा दूसरे संदेश मतलब गीत की तरफ चलने से पहले आपके संदेश की तरफ चलते हैं। पैसेंजर ते पु एम एस लुआ अनुपु पी लिंदा इते लौ खाकतान इपे ले तु खा कलौ थे ओ रोन्ती आ ओले जे लरें थे, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और मुझे अपने कीमती वक्त यस निकाल के मुझे संदेश भेजने के लिए, और अपने पैसेंजर्स के लिए गीत डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस, और मैं चाहती हूँ कि आपका समय दिन और आप जहाँ जा रहे हैं अपने पैसेंजर्स को लेके आप सही सलामत पहुँचा देना, ठीक है? यस, और अपने काम अच्छे से करते रहना, ठीक है? और कुंतिया खियान अर्जे मो वी एल का उजल जाम अमिंग थर इशे दू एम अमिंग थर चुमो भालू ओ भालू मो आइन भेदो नमी भालू दे चु थाउ दो खालो मन दी छिन भालू चु उजी पे जोग भालू चु उजी पे नाइन भे जोग जाम दे चु ऐ असा का पंदे उलेगा ओले। तो चलिए, फिलहाल मैं चलना चाहूंगी अगले गीत की तरफ, और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी चलते चलते अभिजीत के आवाज में गाया गीत थे दोस्तों। यस, तो ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को चलते चलते अभिजीत और यस अलका याग्निक जी के आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी ही ऐसी चीज है कि पता नहीं कब कहाँ किस वक्त हमारे साथ क्या हो जाए। हम जिस चीज को कभी भी सोचते नहीं है कि वो हमारे साथ होगा, ऐसा होगा, हम कभी भी नहीं सोचते, लेकिन लेकिन क्या करें, जिंदगी हमें किस मोड़ पे ला खड़ा कर देती है और किस मोड़ पर ला देती है ये हमें अंदाजा भी नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, है ना दोस्तों, जिंदगी में जो भी फेस करना पड़ेगा ना दोस्तों, आप कीजिए, ठीक है, यस। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो मतलब जिंदगी ने हमारे लिए एक अच्छा समय मतलब संभाल के रखा होगा ना, यस। तो चलिए, फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गीत पसंद आ रहा होगा और अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी तेरे दिल का, यस, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से दोस्तों आप सभी के लिए। और इस गीत के सुनाने से पहले मैं चलना चाहूंगी आप सभी के प्यार भरे भेजे गए संदेश की तरफ। और हमारे पास 10 मिनट बचे हैं दोस्तों, मिनट सोम लो कनला नया तो इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मिंग सेफ लाओ ने नचंग इन मैसेज का दोंग ले आ तो लाइट सो ओ नंबर सेफ लाओ ने नचंग इन मैसेज का दोंग थे रियाओ मई यस, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें सुनते हैं लिसनर्स ते कन पुंग जे ला अलोम ओम चिन ले मई, यस। और ये संदेश आया है रॉबर्ट सियामा की तरफ से, RJBL kwa in a zir si a lana du de olau ble zir te muti tsuak te dur o le gan lau dum do niya o tsuan mi lau ngay la ziaro o tsuan message te po miro ton chin do niya o iman zang zang in or dusra sandesha na he mere dos vi kung tia ki taraf se kung tia kyan i u ka shil do na ron ti i du le shil la aho phal don chang lo balu ati che nun te nu shonin

دون بتي لا يدولي بتي نيجي عن زي تي لو باي موريس كي طرف سے سندیش آیا ہے موریس لکھتے ہیں کہ Miss RJ Veal, good afternoon, Arondia. Aapko bhi good afternoon, Maurice. I playlist ya moi trinte take. Ihun tam zok ero karon langwe mantasi lawa. Eng po chuni se twang taka ho turin tu sakna sang berkalana say goodbye, Arondia. Yes, thank you. Jab prem ki shakti sata ke prem par vijay prapt karta hai, tab sansar mein shanti aati hai. Theek kaha aapne. Yes. मोहब्बत ही तो जिंदगी है प्यार ही तो जिंदगी है ना प्यार के बिना तो कुछ भी नहीं है हितेंद्र दास जी की तरफ से संदेश आया हितेंद्र दास जी लिखते हैं गुड आफ्टरनून आरजे जी यस आपको भी गुड आफ्टरनून हितेंद्र दास जी आपका दिन कैसे बीता तो चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ तेरे दिल का रिश्ता मेरे दिल से पुराना है सोनू निगम की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को सोनू निगम की आवाज में गाया गीत तेरे दिल का रिश्ता, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, बहुत ही खूबसूरत गीत दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। और जी हाँ दोस्तों, इस तरह यस सिंस 2018 से ये ये जो रिश्ता है ना आरजे वीएली और आपका, बहुत पुराना है ना दोस्तों। यस, इसी रिश्ते को दोस्तों कभी मिटने मत देना, ठीक है। और मैं आप सभी को बहुत मिस करती हूँ, और जब भी मैं एफएम्स और 100.7 पर आती हूँ आप सभी से बातें करने के लिए, आप सभी को ये सुनाने के लिए, तो मैं आप सभी को मिस करती हूँ, ठीक है। और आप भी, जब भी आपके पास वक्त होगा, समय होगा, तो मुझे भी संदेश भेजना मत भूलिएगा, ठीक है। जिस तरह मुझे आपसे बातें करने में जो एक्साइटमेंट होता है ना शायद वो आपके पास है या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस एफएम्स और 100.7 को हमेशा हमेशा यस सुनते रहना, ठीक है। हम वादा करते हैं कि जब आप अकेलापन महसूस करते हैं ना, तो जब आप सुनेंगे इस एफएम्स और 100.7 को, आपका दिन ना बहुत अच्छे से बीतेगा, ठीक है। और आपको ना अकेलापन महसूस भी नहीं होगा, और आपको किसी की याद भी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे दोस्त जामा की तरफ से संदेश आया है, ये यस इस खंड के लिए आखिरी संदेश मैं पढ़ना चाहूंगी। जामा हन अर्जेविल, गुड आफ्टरनून ओ रोन्तिया ओले ओ नोले ओ जाम चुहान तुए मो इन मिंग थर्म इन वुआ तिर ए लो लोम तकिन लोम तकिन कपूज जेल मेन यांग चु नेक्स्ट सॉन्ग इतान चौ वी एल क्लांग तकिन हो अंग चे ओ फ्राइडे मो खानी लव ड्यूटी लव अंग लव ड्यूटी लव अंग ती कलाउ का खो अंग चे ओ ओले अंग पुचनी से वंस अगेन आप सभी प्यारे दोस्तों को फिर एक बार दिल से मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी का दिन समय जरूर अच्छा बीता होगा। यस, बहुत ही खुशियां और आनंद के साथ दोस्तों, अगर शायद आप अगर नाराज किसी से होते हो या उदास हैं किसी को लेकर, तो उदास मत होना दोस्तों, ठीक है। आपको नया समय अच्छा समय जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, और मिलते हैं फिर कभी जल्द ही, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो आरजे वीले की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, वेकू ऑल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो के साथ योग्याकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रांबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति प्रबोबो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुरानी सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्वार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों की यात्रा

0: के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। इससे पहले महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर तथा सचिव अनिल मलिक ने पूर्ण सत्र में भाग लिया। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन भी आज शाम सम्मेलन में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा की। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की और राहत तथा पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस बीच मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बादल बरसने, तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। प्रभास मंडल को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलीम वायुसेना अड्डा शामिल है। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. In a joint statement, President Prabowo said Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex and said culture continues to serve as a bridge connecting the two nations. Addressing the Prambanan temple, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।

0: ही आकाशवाणी आइजोलानी थूले लालितर मैगजीन तुनचुम थूले लहुना चुन थु चिन्ह कन गाय था अंग अमसा इन मिजो लुई फोक सोंग फुंगले जिया रंग ती कन गाय था अंग हे थोरन सोई तु तुर ही रोहमिंग थंग हराल ते असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट शाहबान कॉलेज
1: ओले तुनचुमा कंथुरन सुइतुर हि मिजो लहलुई फोक सोंग नि फुंगले जियारांग तियानि मिजो ते हि अन कंथु ले हलाते जिका दा थन तुर हरोप कन नै हरवांग इन कन लहलुई तम तक ते खा ट्रोंका इन हन छोन ओरल लिटरेचर कन ति अंखा अनिया चु वांग इन कन लहलुई ते पो एंगे मुजा चु कन थे हेलिन कन ति बोरल तो नगे यारिनोम कन नम चनचिन थुई तक चियांग तका कन श्री थेलो वांगिन कन हलाते ही कन नि ट्रन हुन चियांग तकिन सोय हर सहले आ पीपु ते थंग क्ला कुंगा अनलन इते चु कन श्री थलत थे बेर अनित मैसी कन फोक सोंग छुई हलत थे बेर ते चु कुम सांग खत जथुम वेलमी खा अनितो मै ओमे मिजो हलुई ती कन सोय तुर ते ही तलर नि जाइले तलर थुम जाइ खाती इन सुईला कन फुन किम थे बेरिनरिन ओम मिजो लहलुई फोक सोंग ओम जियाले जियारांग अमसा इन मिजो लहलुई फोक सोंग हि पीपु ते जाय तिया अन सोई थिन बोखी रोजुन ला ति इन कन सोई बोकांगा अनि फुंगले ओम जिया चु ति हिया थान सोई फि अमसा इला अरिल थान मोय चुआन रोजुन ला फोक सोंग चु हेति हियान अ सोई फि आ मिजो लहलुई फोक सोंग खा सोई दान थ्रांग थ्रांग कन नेया कुम जबी सोम नि ना तीर लमा खचुन खोवेल जाय तिले मिजो जाय ति इन अनसोई बेरा हेंग दे ही को रन लमिन अनसोई थिन दानानि मिजो हलुई ति ते पीपु जाय ति ते मिजो नम जाय ति ते मिजो नुन लुई ला ति ते हुन लुई ला ति ते इन अनसोई बोक जिरलाई बुलामा चुआन मिजो हलुई ति अनि बेर नम तिन ही अन फोक सोंग कन ने वेका मिजो ते ही अने थनेम पो तक कन नि मे ओमे पीपु तेहला असक असक चीते अछमा छम चीते श्रील चीते रिमोय मंगा तुम ची ला ते ही फोक सोंग चुअन हुआमनि ती इन आरल थन मोय चुअन सोई अन सोई थी नंगिन मिजो ते ही जाय ngai na em em nam kan ni a kan thi in kan zaya kan lom ni in kan zai boka hun enge mole hun enge mo kan ti khom ni khu a kan zai zela zai hi kan nam zia zinga telani ti ila dot kan sui in arin omlo chutianga zai ur em em nam kan ni awang chuan kan trung kama po khuang lo cha yang ti te po kan nei pha a om zia ni ber chu zai na man rua khuang tel lo chuan kha hun enge muti na a kan hun man dan kha du thu samin afam kim lo ti na ani mai ang chu ro chun lo om zia ni phung le zia ram ti chu ti hian soifia ila pakhat na a chuan kan ro chun hla te hi atlar za tin opat dan a ril thri na tlar ni zai te kha kan lo upa ber ber te ni in tlema kan lo chang kan thret nu a tlar thum zai te kan nei le a kum zabi som ni na tir lama chuan tlar li zai te kan lo nei le ta ani pahnina a chuan kan ro chun hla zia rang pakhat le chu hla thluk in tro mani hla thluk khat ring ho hi hla bu khat ti in aril than moi chuan a soi kan ro chun hla te kha thluk rang nei ve ma se a in nai hlom e me ma अरल थन मोय चुन कन रो चुन हला तिखा रि चिथु म टंगा चिंगा अनिला पुइति इन सोया हे हि अछन निया लंगचु पीपु ते रिमोय मन रो ने मसक चु दार निया पीपु ते दार बु खान रि चिरंग तम तप अछु थेलोवा हे वांग हियन अनला आ पो रि चिरंग खा अतम थेलो अनि अरिन ओम वायलेन नुवा एरो रिमोय मन रो रंग रंग ते अनलो मेल रियत तमता आ कन रो चुन हला ते पो रि चिरियत नेते अनलो नि तनोक अनि पलीना कन रोचुन हजिया रंग लंगसार तक पखचु अतला चोपा फुवा स्पोंटेनिटी अनि अतला चोपा फुवा अनि अवांग इन

चार कोल की एक सड़क पर दो साए हैं, अंधेरे की नाजायज औलाद है शायद, घूंट घूंट खून पी कर दोनों पले हैं शायद। पातले जमीन है न सर पे आसमान है, जिंदगी कुचल गई ये उनकी दास्तान है।

आकाशवाणी रेडियो के FM 100.7 पर आप सभी का दोस्तों स्वागत करते हैं और मैं हूं आपकी आरजे मासूम चौंगी और इस खंड को हम फिर से एक मजेदार गीत के साथ हम शुरू करेंगे और ये है मोहब्बतें मूवी का गीत चलते चलते।

मोहब्बती मूवी का गीत है और यहाँ अब कैसे इस पढ़ लेते हैं, ये अखंड की शुरुआत नहीं आया था दुर्गेश नागरपुरी जी से और इन्होंने लिखा है गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग और नमस्ते गुड इवनिंग, नमस्ते जी आप लोग भी नमस्ते जानी दूती नौ में रुनतिया, थैंक यू थैंक यू। और चलिए तो अगले गीत की ओर चलते हैं, ये दिल चाहता है मूवी का गीत है तन्हाई।

हाँ ये दिल चाहता है मूवी का गीत है, और यहाँ के हम मैसेज की ओर जाएंगे, ठीक है। ये मेमोते से आया है और इन्होंने लिखा है सोमतुआ नमस्ते ड्यूटी नॉन ले रंदी है, थैंक यू वेरी मच कलोम तुके चौनिन एल दिन पुया हियानिन आर जे प्ले ले तुरखा नमा तान ले लोंगा छवे जोंग सोंग तान ले आर जे जोंग जोंग तान ले कशांति वेंग शंग शंग मीते तान ले पापा रिपू तान कुंते तान मेमोते के वाल तुई कोल मीते तो चलिए अगले गीत की ओर चलते हैं। ये रिफ्यूजी मूवी का गीत है ऐसा लगता है, और ये गीत हम खास करके लल दिनपुया फल कौन वेन लाए और मिमोइते के लिए डेडिकेट करते हैं।

जीन रूवी का गीत है और यहाँ मोयापुई से हमें मैसेज मिला है. इन्होंने लिखा है आरजे ज्वाल बोयरंती आरंती ज्वाल बेजुक्स में आ. एनीवेज जब ये ड्यूटी नॉर्मल में मोटे आ हक्ते आ पापी पुंते आ जेलर जाम तताने तब माता ना रंती आई दिलों में तो थोड़े हम विदित की ओर जाएंगे और ये आतिफ असलाम की आवाज़ में हम सुनेंगे दूरी. और ये गीत हम खास करके रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी में पढ़ने वाले और जो पढ़ चुके हैं जो पास हो चुके हैं उनके लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे. तो चलिए सुन

आकाशवाणी आइजो के FM 100.7 पर आप सभी का दोस्तों हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूं आपकी आरजे मासूम चौहानी। और दोस्तों ये खंड हमारा 20 मिनट का ही रहेगा, 7 बजे तक का ही होगा और कोशिश करेंगे हम इस वक्त पर आपको हिंदी के मस्त मस्त गीत सुनाने का। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं रावण मूवी का गीत और ये है छम्मक छल्लो।

आप सभी सनम पुरी की आवाज में पाहिलिया सुन रहे हैं और अगला गीत भी सनम पुरी की आवाज में है और जनिता गांधी की आवाजों में है, ये है तेरी आंखों से।

सनम पुरी और जनिता गांधी की आवाजों में जो आपकी सुन रहे हैं तेरी आंखों से, और यहाँ वी कुंते से लास्ट एट लास्ट हमें मैसेज मिला है और इन्होंने लिखा है आरजे वो बॉन्ग एकदम छामो रोन दूती हैं जे लजा मही अलोम छीन ने अंगाई थे लु तुप जे रोन दी हैं फिर लोग दिया मैं वो पत्यान सारा है गंदम चवेरे चौक चौके। और चलिए अगले गीत की ओर जाएंगे, ये आरक्षण मूवी का है, अच्छा लगता है, और ये गीत वी कुंते के लिए।

आरक्षण मूवी का गीत जो आप सभी सुन रहे हैं, यह अच्छा लगता है। और जॉनगस बॉयज से हमें मिला है, इन्होंने लिखा है आर्जो सोमपाल नमस्ते जी, आपको भी नमस्ते। नेक्स्ट इतान रंगदिया। और दोस्तों अब हमारे जाने का समय आ गया है, क्योंकि फिर आप सभी 7 बजे से आरजी ब्यागजोरी के साथ अपना वक्त बिताने वाले हैं और वे हमारे फेसबुक पेज पर लाइव होने वाले हैं। लोग जो इन्वेंट है दोनों फेसबुक पेज अगर लाइव तो रही आरजी ब्यागजोरी ने। और तो हम सुनेंगे ये सिंघम मूवी का गीत है साथिया, और हम वापस लौटेंगे 8:02 पर, ठीक है।

FM 100.7 पर आप सभी का दोस्तों हम फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं हूँ आपकी आरजे मौसम। दोस्तों ये खंड हमारे मनपसंद हिंदी फिल्मी गीत आपको सुनाने का समय होगा। ये आज इस शो का सेगमेंट है, तो आशा करते हैं कि आपको हमारे जो मनपसंद गीत हैं वो अच्छा

मेरी मेरी कहानी गबर इज बैक मूवी का गीत है और यहाँ जॉन अगस्त बॉय का हमें मैसेज मिला है. इन्होंने लिखा है पिस ऑफ नेक्स्ट तान रोन दिया जॉन इन सा मा मिशन वेंग हिया ने ना ऊ लॉय तान रोन थल सा का मैसेज कन शेयर सक रहे रहेंगे ओ कौ लॉय ही कहा ए मे मा लेना कदम लाए थे कन सुन को कदम लाए थे तो ना सोन नु ले बा कने तो लो बा कन नो हन पसर कन ने आ शा छु मा दारते लॉय शे ना दार छी पुई बाकु मले tang kham liani te kan nia kan kumte lo tam to sa kan inka pozum zung thai to si lawa ko loi han ri di ama charing china I play le tur kha atang lo la ne kwang tu mai la win ran ti a o pu loi chon ni lo ngai thang e ro se o chon in ma mu ne ram lo ti pon hey message ron tu na la ron tlang na kyo wa o kan play sa ka nga ma se kin ul kha mi lo ha shap cham don ya o तो चलिए अगले गीत की ओर हम जाएंगे. ये पाठशाला मूवी का गीत है. ये है ऐ खुदा.

आप सभी हमारी अधूरी कहानी मूवी का टाइटल ट्रैक सॉन्ग सुन रहे हैं और यहाँ हितेंद्र दास जी का भी मैसेज मिला है। गुड इवनिंग सर। और मिनाल अहमद जी, आपने जो जिस गीत की फरमाइश की है ये हमारे लिस्ट में नहीं है, हमें माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी मैसेज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं ये गाना सुनना चाहूँगा और डेडिकेट करना चाहूँगा सबसे पहले आरजे मैम आपके लिए, मेरे प्यारे पसंदीदा सभी आरजे के लिए और पूरे टीम, प्रोड्यूसर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, ऑल डेडिकेट करना रहेगा सभी सुनने वालों के लिए, सभी मेरे प्यारे दोस्तों के लिए और मेरे परिवार के सभी सदस्य के लिए। हमी मनबा लिंदियो, रमोना जी फ्रॉम गोवा, हितेंद्र दास, रूबी, शुमा, झुमा, उमा शंकर, अभिजीत, अफसाना, उमरजीत, रहीमा, रसवाना, सनी, कभी कभी खो जाना भी चाहिए ये देखने के लिए कि कौन तलाश करने आता है। बहुत बहुत सही लिखा आपने। और अगला गीत जो है ये बागी 2 मूवी का गीत है और साथ ही और इनसे रिक्वेस्ट करने वाले थे मामू ने रमलोत और लुकते में लोग आए थे दोनों, और ये गीत भी आपके लिए मीनाल जी आपके लिए जाता है, तो चलिए सुनते हैं ओ साथी।

आकाशवाणी एज़ो के एफएम जो 100.7 पर आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपकी आरजे मलसोम चौंगी और ये दोस्तों आज का हमारा आखिरी खंड होगा और इस खंड को शुरू करते हैं बहुत ही मस्त गीत के साथ और ये है सनम तेरी कसम मूवी का गीत तेरा चेहरा।

तेरा चेहरा सनम तेरी कसम मूवी का गीत है और यहाँ हम पढ़ेंगे ललदिन पुयफल कोनवेनाई का मैसेज इन्होंने लिखा है आज ये प्ले ले तुरखा नंगमा तान ले लोंगा इतलो बेजों जों तान ले आज ये जों जों तान ले का चांते वेंशा शंगमी ते तान रुन ते ललदिन पुयफल कोनवेनाई एफएम गाई सांगे में तो रुन ती आज सो दिन जो नगस बोई है ने आज ये सोम प्लोंग प्लोंग तकिन होला ड्यूटी ले वत लगो कोंगा फिल्म खुलाई प्ले लिस्ट नंगमा तान रुन ती बुका चुआन सोमे से सोहियानी आर जे इ प्ले ले तुरखा मा छुंगी मा चुंगी ते नुपा तान रोंती बोकनी तो चलिए अगले गीत की ओर चलती हैं ये तान मूवी का गीत है इश्क बिना

इश्क बिना ताल मूवी से है और यहाँ हितेंद्र दाजी आपका भी मैसेज मिला. गुड इवनिंग सर. और वी कुंते यानि नेक्स्ट का सोमी से सॉन्ग दिन पुए फल कौन ले मरीज क्या ते ते तानो रो दिया सोमी ते दिन पुए ते ले मरीज क्या ते लिखा ना लुकते भी नहीं लगा इतना दोनों. और अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी से है. हो गया है तुझको तो प्यार सजना और ये वी कुंते ने सोमी से सॉन्ग दिन पुए फल कौन और मरीज ख्यांगते के लिए रिक्वेस्ट किया है. तो चलिए सुनते हैं हो गया है तुझको तो प्यार सजना.

तेरे बिना गुरु मूवी का गीत था, और अगला गीत जो है ये दिल से मूवी से है, जिया जले। और ये गीत खास करके चंते यहाँ पर कनान के लिए हम डेडिकेट करते हैं, तो चलिए सुनते हैं ये जिया जले।

जी हाँ, जले दिल से मूवी का गीत था। और दोस्तों अब हमारे जाने का समय आ गया है और ये आखिरी गीत होगा लकी अली की आवाज में, ओ सनम। और ये गीत आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, सभी को शुभ रात्रि।